पंच नार संग अष्ट सुत उठ है तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहिरी लै पहार जा संगलाई पांचो आर जा सुरमानंद।

चतुर्चक्रवर्ती चतुर्चक्रभुते स्वयंवा सुभंग सदा सुयुक्ते युगानं प्रणासि दयाल स्वरूपे सदा संगे अवंदन विभूते देख देखो फतेह नसरत बेदरंग आपतज आजनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरुष सहाय दरबार मित्र दरबारा सत्खंड वंदन अंगारा लक्ष्मी कड़ी तुम्हारे दरबारा सब देव के नमस्कार।

ब्रह्माय अर्विषन केते वेदया पुराण केते सिमरत समूहन कहोय होय बितय है। मोन दी मदार केते अश्विनी कुमार केते अंसा अवतार केते काल बस पए है। पीर उपकंबर केते गने ना परते ते भूमि ही ते होएगा फिर भूमि ही मिले है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्री ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। मान से मही प्यो दिलीप कैसे छत्रधारी बड़ो अभिमान पुज दंड को करत है। दारा से दिलीसर दुर्योधन से मान तारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप जी कपट पेस पोस्ती अनेकता निवावत है। शीस कहो कहां पयो मल जो पे काटत अनेक डंड सोतो ना डंडाओ तो अष्टा।

ताप के सहे तेजो पपाइया अतापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तुजो पपाइत अजाप देव पूदना सदीव तू ही उचरत है। नव के उठे तुजो पप नारायण पाइत अनल आकाश पंछी डोल बो करत है। आग मजर तिगत रांड की परत कर पताल के बासी क्यों पुछ

इमाम साफी मानस की जात सभा एक पहचान बो करता करीम सोई राजक रहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही को गुरुदेव एक एक ही स्वरूप सब एक जोत जान बो देहुरा मसीत सोई पूजा निवाज ओई मान सब एक पयन एक को भ्रमाओ है देवताया देव जाच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

नेहं न गेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं अताकं न जातं न पातं न मित्रं न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मं न परमं न शर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न बाके न सत्रं न मित्रं न पुत्रं न स्वरूपे नमो आदरूपे नमो आदरूपे कहूं कंज के मंज के परम भूले कहूं रंग के राज के धर्म अलूले कहूं देश के भेष के धर्म तामे कहूं राज के साज के बाज तामे कहूं अक्षर के पजर के सिद्ध साधे कहूं सिद्ध के बुद्ध के बृदला दे कहूं अंग के रंग के संग देखे कहूं जंग के रंग पेखे कहूं धर्म के कर्म के हरम जाने कहूं धर्म के कर्म के परम माने कहूं चार चेष्टा कहूं चित्र रूपं कहूं परम प्रज्ञा कहूं सर्व भूपं कहूं नेह गृहं कहूं देह दुखं कहूं औषधि रोग के शोक सोखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जच

स्वप्नाग्रस्तं समस्तं सरूपे नमस्तं नमस्तं त्वस्तं अपुते त्वप्रसाद पाधड़ी छंद

जय त्रास वास नहीं देह नास, जय आदि अंत नहीं रूप रास, जय रोग शोक नहीं जोग जुगत, जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल ब्याल कट्यो न अंग, अच्छा स्वरूप अखै भंग, जय नेत नेत उचरंत वेद, जय अलख रूप कथत कतीब, जह अलख रूप आसन अडोल, जय अमित तेज अच्छा अतोल, जय ध्यान

जगे आदि कर्म कहूं अग्नहोत्र कहूं तीर्थ धर्म। कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई करत भांत भांतन विचार नहीं नैकतास पायत ना पार। कई तीर्थ तीर्थ परमत सो परम कई अग्नहोत्र कई देव कर्म कई करत वीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायत ना पार। कहूं राजरीत कहूं योग धर्म कई सिमरत शास्त्र।

तपह जुगण जूह जुवंग भय कंपह मेर पयाल भुवंग तपताप सर्व जलेर तलंग तनुचरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंग अनखंड भूत अजेत अक्षयंग अनकाल अपाल दयाल असुअंग जय ठटियंग मेर आकाश भुवंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव अदेव बरंग सबकिनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग ना रूप ना रेख रुखंग जय ताप न साप न शोक सुखंग जय रोग न शोक न भोग भोयंग जय खेद न भेद न छेद छयंग जय जात ना पात ना मात पितंग जय रचियंग छत्री छत्र छितंग जय राग ना रेख ना रोग भणंग जय द्वैख ना दाग ना दोख गणंग जय अंड दे ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नव खंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनुभव पदया प्रचंड लियो श्री सेंद्र बिंद नगिंद नगंग श्री जच गंधर्व अनंत भुजंग रच देव देव देव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल त्रगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज चेतज उत्त भुजंग किए देव य देव सराद पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय तात न मात न प्रहात सुतंग जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय जंपह किन्नर जच जुअंग नर नार नपुंसक जय किए गण किन्नर जच भुजंग दिए गज पांज रतांत पाद गणंग जय पव भूत भविक भवान तुअंग जय अंडज जेरज सेत रचन जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूम आकाश पताल जलंग रज पावक पौन प्रचंड बली बन जास की ओफन फूल कली भू अमीर आकाश निवास चितंग रच रोज एकादश चंद्र प्रतंग दुत चंद दिन सह दीप तई जय पावक पौन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाए दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे अनधूत अभूत अच्युत मतंग अनगाद अभ्याद अनाद गतंग अनखेद अभेद अछेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग ना रंग ना रेख रुगंग जय सोग ना भोग ना भो जोग जुगंग भो भंजन गंजन याद सिरंग जय बंदत देव अदेव नरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मन मानक मोती लाल सुचे अनपंज प्रभान।

अगंज आदि देव है अभंज पंज जानिया भूत भूत है सदा अगंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध प्रद।

न कर्म है न धर्म है अजन्म है अपीघ है न तात है न मात है अख्याल है अखंड अख्याल अखंड रूप है अछेद है अपीत है न रंक है न पूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अपंज है।

न कर्म है न परम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज सी विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ मोहकार है न आद है न गाद है न व्याध को विचार है न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है न हाव है न पाव है न दाव को प्रकार है गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा सितुष्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त याद जे बड़े तपस्पति।

दुष्ट हर्ता पुष्ट करता सृष्ट हर्ता काम। दुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोबिंद, मित्र पालक सत्र कालक दीन दयाल मुकंद। अगौ डंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल, दुष्ट हरनंग पुष्ट करनंग सर्व के प्रतपाल। सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निजभाम। सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण, सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन। सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार, दुष्ट हरता विश्व भरता।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन पृष्ठ विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आद कथे कंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहण बितल तले जय जय हो सीमा कसब ठौर निवार।

दीनन भंजी नाथ जल तल प्रभाव सर्वत्र ना साथ जय जात पात नहीं भीत परम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप विचल अपार जानी ना जाए जय रूप रेख कह बास दास कह कौन पेख कह नाम दास है कवन जा जय सत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप उद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अन छिज तेज अन पिज अदाग जल थल महीप बन तन दुरंत जय नेत नेत

पूर्ण प्रभा की सो छटा के अनुमानिया तेज हूँ को तंत्र है के राज जी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कह के जानिया तेज हूँ को तर है के राज जी को सार है के शुद्धता को कर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना की शान है वृत्तता की पान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है कनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के कृत को अभूत है के अच्छा अविनाशी है काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन करिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के सतरण के साल है के मित्रण को पोगत है के वृद्धता की पासी है जोग हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को पास है के बुद्ध हूं को घर है देवन को देव है निरंजन अपेव है अदेवन को देव है के शुद्धता को सर है जान को बचैया ईमान को दिवैया है जम जाल को कटैया है के कामना को कर है तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महिपन को मंड है के स्त्री है ना नर है विश्व को पर्ण है के अपदा को हरण है के सुख को कर्ण है के तेज को प्रकाश है पाइया न पार पारावार हूं को पार जा को कीजत विचार सो विचार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हलबी जावे।

निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के बुजैया है मोहैया महाबाल के राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है तरैया द्रुम छाल के कामना के कार है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के छीर कैसी छीरावत छाज कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्री के कुल के हंसनी सी सिहारूम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी तार चली साधो सिंध रूल के पारा सी पलावगढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरा सी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीर्त तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊगढ़ काशीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निका सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलप्पा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावत जी चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंग थार बकान सी बलिंदाबाद कीर्त तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी परासीस के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है पखरी कंधारी गोर गखरी करते जा चारी पौन के आहारी तेरो ना

प्राण सखाई। हर कीरत हमरी रह रास रहा, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्तास है, मिल संग

जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सिवकण को सिवगुण सुख दियो, सतरण को पल मुह पद कियो, घड़ घड़ के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चींटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने, जा बुध करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देहे अपारा, जब आ करख करत हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे, आप अपनी बूझ उचारे, तुम सब

अनाद असंभ ताका मूड़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड़ कश भेद ना जानत महादेव कौ कहत सदा सिव निरंकार का चीनत नह भिव आप नी बुध है जेती बरंत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कही भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उतबुज खान बहर रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं समट भयो संकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत तुत पाता सकल मलेच्छ करो रणघाता जे अस ध्वज तौ शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिए हैं ताके काल निकट नह है रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहर हो ताके ताप तनक महर हो रिद्ध सिद्ध घर मु सब होई दुष्ट छा छय सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फांस ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारत दुष्ट दोख ते रहा खड़ग केत

हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता, किल्बक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को क्षय करता। श्री अवधूत भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशत फल।

हमरे सब काज, तुम हो सब राजन के राजा, पे आप गरीब नवाजा। दास जान कर कृपा करो, मोय हार परा मैं आन द्वार तोहे, अपना जान कर।

मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बाहु भेद कह हम एक न जान्यो। श्री अस पान कृपा तुम रिकार मैं ना कहो सब।

पहला मुसलमान सब सरियत पर कर विचार बंदे से जे पहुंच बंदी वेखण को दीदा हिंदू सलाई सलाह दर्शन रूप पार तीर्थ ना वे जा पूजा करो वास में का जोगी सुनते आऊं जी तेलक नाम करता सुख मुर्त नाम निजन का कर सतिया मन संतो को जे देने के विचार दे दे मंगे ससा गुणा।

0: पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मस पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लेख एक गाले और हमें चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया।

0: अल मलिक हाय सुरचाई पाई मूर्ख अंधा पत गवाई बिन ना वे कि चताए ना पाई रह बिवाणी मणि मसाणी अंध न जाने फिर बचतानी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए
1: नानक अंदर कृपा सो पाए आसन दी सीती नहीं।

0: तन फिटे फेड़ करेन मन जुठे चुनी परे
1: कहु नानक सच त्याई है सच होवे ता सच पाए पौड़ी।